साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहेब साचा नाय रहाओ साचे नाम की तिल बड़े आई आख कीमत नहीं पाई।

सेवक सिख हमारे तारिए, चुन चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ है मुझे वरिये, मन काल का त्रास न वरिये। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री तुझो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखन हारे, साहेब संत साहेब प्यारे।

अमरे सबैरिय संघारो प्रथम धरो पवद को ध्याना बोर करो कवता विदनाना किसन जथा मत चरित्र विचारो चूको ए कबल।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत सुरग वासरग वरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई।

इतनी सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन करद्या पुला दे माफी बख्शनी आवन भाई साहब कुलबीर सिंह जी दमन टकसाल वाले शहीदी हफ्ता जून 1984 घलोकार दसवंत साजरे हैं उन्होंने पासों कथा सरवण करो।

मन दी है। अगर मन डिग गया तो नाल शरीर भी डिग पैंदा है, तो जे मन बलवान है तो शरीर च भावें घट शक्ति भी हो गए, वह घट शक्ति के बावजूद भी मैदानी जंग विच नित्र जाता है। वो नहीं डरता, ना हुकूमत को डरता है, ना कोई डरावे दे नाल उसनू डराया जा सकता है, ना किसी माया करके जां किसी होर प्रभाव करके उहदे मन नूं डिगया जा सकता है। आम संसारी दे विच ते निरंकारी च यही फर्क हुंदा, बेसक यही फर्क हुंदा है। संसारी दा मन जिहड़ा ये डोलदा है, कदी उत्ते चला जांदा है, कदी थले डिग पैंदा है, कभू जीड़ा ऊब चढ़त है ते कबू जाए प्याले, पापी जीरा फिर ना रहत है चारे कुंडा भाले। वो मन जेड़ा स्थिर नहीं, डोलदा है। इस करके गुरु अगे अरदास कीती जांदी कि डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते रखो प्रभु। ये डोलना किदा है? मन दा है। ये डिगना किदा है? मन दा। डिगन डोला तौ लो जो मन के भरमा। गुरु कहिंदे जदों तक तेरा मन डिगा है ना, जां हिलदा है, जां चंचल बिरती है, उदों तक तेरा डिटरमीनेशन, तेरा फोकस जिहड़ा ये बन नहीं सकता, किसे काम च नहीं बनेगा। तू पूरी तरीके दे नाल संसारी भी नहीं बन सकता। परमार्थ दी ते गल छड्डो। कई बार संसार दे विच आदमी वधिया पिता भी साबित नहीं हुंदा, वधिया भरा भी साबित नहीं हुंदा, वधिया शहरी भी नहीं साबित हुंदा। अपने अपने अंदर अगर झाती मार के वेखिए तो सानू अपने अंदरों ही स्वय पड़चोल करन दे नाल इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। गुरु कहिंदे ने मन ना डिगे ना तो तन नू भावें जिन्ना मर्जी डरावा पा लो, जिन्ना मर्जी तसीहे दे लो, उहदे नाल भी उस आदमी नू भरमाया नहीं जा सकता, उहनू हराया नहीं जा सकता। मन ना डिगे तन काहे को डराए, शरीर नूं कहदे डरावा दे रहे। तत्ती तवी दे उत्ते बैठ के भी गुरु अर्जन देव दे पातशाह जी कहिंदे ने कि तेरा किया बीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। ते साडे जीवन च थोड़ी जी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा जिहा कोई औखी घड़ी आ जाए, हालांकि औखी घड़ी हुंदी नहीं, असीं समझ लैंदे हां, ते उदों खो मन आदमी दा किस तरह डावांडोल हो जांदा है, किस तरह बेबल हो जाता है, किस तरह उहदे अंदर हलचल जिहड़ी मच जाती है, ना दिन नू रात, ना रात नू चैन, ना दिन नू चैन, किसी पासे भी उहनू करार नहीं लभदा। गुरु कहिंदे ने मन मन नू दृढ़ कर, दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा, फोकस करेगा, ते तेनू वह चीज़ भी प्राप्त होवेगी जिसनू गुरु साहिब तेनू तेरे हाथ विच पकड़ाना चाहते ने, जिस तो भुला होया। गुरु कहिंदे ने मन दे उत्ते कम कर, मन ते कर्म कम करेगा, तेरा मन घाट विच आएगा। मन की साधना जिहड़ी ये रब की साधना है, क्योंकि मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मन न डिगे तन काहे को डरा, इहदा कारण की है अगली पंक्ति।

हमारे राम नाम मन लागा जम लचाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विदाता रहा नानक प्रभ अविनासी ताकि सेव न बिरथी जासी आनंद कर है तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंचवा ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई चौगिर्द हमारा राम कार दुख लगे न पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाव राख लिए तिन रखन हार सब याद मिटाई कह नानक कृपा पई प्रभे सहाई सलोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा हो अणा तू नह छुट्ट है निकट न जाई हो दूत श्लोक महला पंचवा मन मह चितवो चितवनी उद्दम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का होए बीचारो तित कर गाव हो सोहेला सिवरे हो सिरजनहारो तुम गाव हो मेरे निरभव का सोहेला हम वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े समालियन देखा गा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तिस दाते कमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावहो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जो हो वै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख बढ़ाई तोए रहाओ विश्वे चस्या कड़िया पहरा थिती वारी माह होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस रागत नासरी महला पहला गगन मै थाल राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तूप मलयान लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाव सहस्तव नैन नन नैन है तो हे काउ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दह चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंक होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर होम मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुपै दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहसोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुखमंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंचवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा आगै वसन सुहेला आउद कटै दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहज हो हर गुरते मन हे बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

शोभा मेरी सब जोग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंग लीने भैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बखसाते जिस पापी को मिले न टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नजरी आया खसम तू है सब न कहराया तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा था थल सिर सरिया तिस पाणा था सब फल पाई चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण को तूठा मन तन शीतल मन अमृत उठा पार ब्रह्म गुर पै दयाला नानक दास देख पै निहाला भैरव महला पंजवा सतगुर मेरा बी मोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सोलाग सेव रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है सतगुर मेरे की वड्याई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कहो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेविया तिस पवना व्यापै जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै नानक सोदे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद भैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तनते गया नाम लैत सगल पूर्वाया नाम लैत अड़सठ मजनाया तीरथ अमरा हर को नाम गोरे उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुट्टे जंजारा नाम लैत जम नेड़ न आवे नाम लैत दरगा सुख पावे नाम लैत प्रभ कै सवास नाम हमारी साची रास गुर उपदेश कहो ए सार हर कीरत मन नाम आधार नानक उदरे नाम पोन चार अवर करम लोकें पतियार भैरो महला पंजवा नमस्कार ता को लख बार या मन दीजै ता को वार सिमरन ताके मिटै संताप होए आनंद न व्यापै ताप ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ जाकी दृष्ट दुख डेरा टहै
अमृत नाम शीतल मन गह अनक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्ण हारी खिन मैं ऊने सो पर भरिया खिन मैं सूके कीने हरिया खिन मैं नितावे को दीनो तान खिन मैं निमाने को दीनो मान सब मैं एक रया पर पूरा सो जापै जिस सतगुर पूरा हर कीर्तन ताकू आधार कहो नानक जिस आप दयार भैरो महला पंजवा मोहे दुहागण आप शिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख और सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा पेटे मोयकंत राव तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर पए परगासा अनहद शब्द आचर्ज विस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट पए गोपाल ताके दर्शन देख निहाल सर्व गुणा ताके बहुत निधान जाको सतगुर दियो नाम जाको पिट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक सो जन प्रपाए ताकि रेन विरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप न आलक आवे बेसवा भजत किशन शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग पूलो संसार आप पुलाया पुला बनहारे रच रहया बिरता व्यवहार रहाओ पेख माया पेखत माया रंग विहाय गड़बड़ करे कौटी रंग लाई।

संत संग करे जो वाद तह निंदक नाहीं कस साध रहाओ पौत के निंदा कंध छदावे पौत के निंदा नरक बचावे पौत के निंदा गर्भ में गले भगत की निंदा ताय राज ते टले निंद की गत

का प्रभ खंडो रोग दुखिये का मिटावो प्रभ सोग न थावे को तुम थान बिठावो दास अपने को भक्ति लावो न माने को प्रभ दे तो नाम मूढ़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयानता का पौ नसे जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म सब सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पहरो महला पंजमा संत मंडल में हार मन बसे संत मंडल में दुत सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग ओए एक परीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन मरन रहे संत मंडल में जम के कछु न कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम बखानी संत मंडल का नेच आसन संत मंडल में पाप बनासन संत मंडल में निर्मल कथा संत सांग हमें दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल

तिस उपर प्रभ कृपा करे, तिस उपर ते काल पर हरे सदा सहाय। हर हर नाम सा जस चीत आवे, ते सदा सुख होवे, निक न आवे।

सुन स्वामी संतन अरदास जी प्राण तन तुमरे पास ए जग तेरा सब तुझे त्याए कर कृपा नानक सुख पाए पहरो महला पंजमा।

कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए राओ। रोग दोख गुर शब्द नवारे, नाम अखत मन पीतर सारे, गुर भेटत मन पया आनंद सर्वनिदान, नाम भगवंत।

आपे घटका जाने भेद जो स्वरूप जाके सब बथ कर्ण कर्ण पूर्ण सम्राट प्रभ की ओट कहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख अरादो दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वहंत्रैन त्रैवंसार जाके सूत प्रोया संसार आपे आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्वाणी आपे भोगी जात कात पेखो तत तत सोए तिस बिन दूजा नाही कोए सागत गे नाम के रंग गुण गावे नानक साध संग मुक्त भुगत जुगत बस जाके वहां नाही किस जंग ताके करके भज सोए सुप्रसन्न।

मनियाए राम राम संत सदा सहाय कर बार नाले परमेश्वर रब रव्या पूर्व सब ठाए राओ तन माल जब जोत गोपाल जी प्राणित सुख पाल अपने दास को दे रखे हाथ निमखना निमखना छोड़े सद ही साथ हर का हर सा प्रीतम अवर न कोई सार संभाले साचा सोए माता सुत सुत बंद नारायण आज जुगाद भगत गुण गायन जिसकी धार प्रभ का मंजोर एक बिना दूजा नहीं होर नानक मन एहो पुरखा पुरखार्थ प्रभु हमारा सारे सुवार्थ पैरो महला पंजमा पैको पहो पढ़िया सिमरत हर नाम सगल ब्याज मिटी त्रै गुर की दास के पूर्ण काम राओ हर के लोक सदा गुण गावे तिनको मिलिया पूर्ण धाम जनका दर्श बस दिन राति होए अपनी धर्म राय जाम काम क्रोध लोभ मत निंदा सा संग मिटिया अभिमान ऐसे संत भेटे बड़भागी नानक नानक तिनके सत कुरबान पैरो महला पंजमा पंच मंजमी जो पंचन राखे मिथ्या रसना नित उठ भाखे चक्र बनाए करे पखंड चुच पंच जैसे त्रै रंड हर के ना बिना सब झूठ बिन गुर पूरे बिन गुर पूरे बिन गुर पूरे मुक्त न पाए साची दरगे सात मूठ रहाओ सोई कचील कुदरत नहीं जाने लिपिया थाए न सोच कर हार माने अंतर मैला बाहर नित होवे साची दरगे अपनी पत खोवे

जसु कर्म करे करतार सा संग होए तिस व्यवहार हर ना पत सो लागा रंग कहो नानक तिस जन के नाही भंग पहरो महला पंजवा निंदक को फिड़के संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को रखनहार निंदक मुआ निंदक कह नाल पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक सर कर क्यों काल राव निंदक का कहया कोई न माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोरे सिर तन लगाए निंदक को दे छोड़े नाहे हार का दास किस बुरा न मांगे निंदक को लागे दुख सांगे बगले जोहरिया पंख पसार मुक्त बोलिया ता कड्या बेचार अंत जामी करता सोए हर जन करे सो निचल निचल होए हर का दास सचा दरबार जन नानक कहया तत विचार पैरों महला पंजवा दोए का जो करो अरदास जियो पिंड तन जियो

मन मन के बेकार मन के बेकार मिटे प्रभ सिमत जन्म जन्म की मैल हरी राओ जाके ग्राय मैं सगल निदान जाके सेवा पाइये मान सगल मनोरथ पूर्ण हार जी प्राण पतन आधार कट कट अंतर सगल प्रगास जप जप जीवे भगत गुणतास जाके सेवन बिथे जाए मन तन अंतर एक त्याए गुर उपदेश दया संतोख नाम निदान निर्मल ए चो थोक करके पाली जे लड़ाए चरण कमल नानक नित त्याए पैरों महला पंजमा

निहार चेत सुभाए राम नाम रस रहे अखाए कोट कोट अंतर के भाव जल जावे जीवत मरे हर नाम समाहे हर की दात हर जियो जाने गुर के शब्द इमन मोलिया हर गुण गाता नाम वखाणे राव भगने वेस ब्रह्म मुक्त न होए भाव संयम साधना भावे गोए गुरमत नाम प्राप्त होए बटभागी हर भावे सोए कल में राम नाम डाई गुरमुरे ते पाया जाई

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

के जन्म मरण दुख जाहे, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाहे, तनाश्री महला पहला शांत।

तुमरी कृपा में सुख निरे, कोई न जाने तुमरा अंत, चेते उचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी।

दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कान मिकोड़ गुआवे एक पी न देह दस पी हिर ले तो मूड़ा को कां करे जिस ठाकर से नाही चारा ताको की जे सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सब सुख ताऊ मन बूटा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अकंद साहु अपनी दे रास खात पीत बरते अनंद विलास अपनी अमान कशबा और साहु ले अज्ञानी मरोस करे अपने प्रति

मिथ्या राजो वर्तन महाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अपमान मिथ्या अपसु पर कर्त गुमान आस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर को हिरे मिथ्या नेत्र पीख पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद

ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दे समान जैसे राज रंग को लागे तुलपवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजे ज्यों बसदा कौ खोदे कौ चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुहाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मनोय प्रगा जैसे धारे ऊपर आकाश।

ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नी मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी उपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार।

संत सरण जो जन परे सो जन उदरन हार संत के निंदा नानका बोर बोरे अवतार अष्टपदी संत के दुख नार जा कटे संत के दुख न जमते नहीं छुटे संत के दुख न सुख सब जाए संत के दुख नरक में पाए संत के दुख न मत होए मलीन संत के दुखन सोबाते हीन संत के अते को रखे न कोए संत के दुखन थान पृष्ठ होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीत रहे संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जन लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच ने चाहे संत दुखी का था को नाए नान संत पावे ता ओए भी गत पाए संत का निंदक माताए संत का निंदक किंटक न पाए संत का निंदक मात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्वरोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दोख में दोख नान संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे कानी मेत संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुखते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद भी ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी अवजल पाइए संत का दुखी अंतर दे थोथा ज्यों सास मना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ कृष्णाए आपने भी जापे ही खाए संत के दुखी को अब न रखन हार नान संत पावे ता ले उबार संत का दुखी अम बिल्लाए ज्यो जल विहून मछली त्रमड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो भाव की धन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे केला जम वाड़ तिल खेत माए दुवेला संत का दुखी धर्म थे रहत संत का दुखी सदमिथया कैत किरत निंद का तुर ही पया नान ज्योत पावे सोए थे या संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निरसा संत के दुख न तिष्ठे कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोए नान जाने सच्चा सोए सब कर तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो साच करा सब कुछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने आर दूसर कौन कहे विचार जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़पा की नानक जन से श्लोक त्याण सुरजनो सिमरो हर हर आए का सर मन रखो नानक दू भरम पो जाए अष्टपदी मानु की टेक वृथ्वी सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए राय अगाए बोन तिस्ना लागे आए मारे रखे को आ मानु के कृष्णा ही हाथ तिसका कुंभ सुख होए तिसका नाम रख कंठ प्रोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन लागे कोए उस्तद मन में करन कार करमन मेरे सतव्यवहार निर्मल रसनाय मृत पियो सदा सोहेला कर ले जियो नैनो भेख ठाक कारंग साध संग बिनसे सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटे भाव जपिए अरबिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगे नानक उजल मथा बड़पा गीते जन

भजन का प्रसंगीत रसना जपती हरानीत पली सो करनी सोभा धनवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत सार संग प्रभ देव निवास सब सुख नान प्रगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अश्वरी जब आकार कृष्णा ए कृष्णा दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समात बैर विरोध के संकमात

दे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे परोंगी परमाते समस्ति विभूते कलंकम नाने कलंकी स्वरूपे नमो राज रे श्रम परम रूपे नमो जोग जुए श्रम परम सिद्धे नमो राज रे श्रम परम विरदे नमो चतुर्पाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोमुख लोक माता अपेखी परमे भोगिए भुगते नमो जोग

समस्त उपराजी समस्त सद्धम तेरा जो चाची छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं भुजंग प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपेर मोह सर्वमान्य समस्ते निधान्य नमस्तं नराथे नमस्तं परमाथे नमस्तवा गंजे नमस्तवा पंजे नमस्तवा काले नमस्तवा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे नमो साजे नमो शाशाय नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीत नमो सर्वपीत नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र नमो सर्व दर्शन नमो सर्व कीर्तन नमो सर्व रंगे त्रिभंगी रंगे नमो जीव जीव नमो विजय खिजय भिजय समस्त प्रसिजय कृपाल स्वरूप कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृद सद नवासी चर प्रसन्न प्रसाद अमृत कर में मृत धर्म खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व पाने सर्व माने

सो भरम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात्र नाम गर्व गंजन दुष्ट भंजन मुकत दाय काम आप रूप अमीक अनुस्त देख पुरख दूत गर्व गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंग हीन भंग नादम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपित पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख

चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र वासे।

भरने के भूत करने के राज प्रवाह है के धर्म तुझा है के शोक बरने के सर्वाव भरने के जगतन कृति है के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूपे के नपो अनुपे के आद अदेव के आप अपेव के चित्रम बहीने के दीने के रोजी रजा के रही में रहा के पाक भी है मैं के अमूल गुना के पाक भी है मैं कि गैबुल गैब है के अमूल गुना है के शहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन दहन के राज कर रहीम है के कर्म करी में के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मानी है के सर्वतर दानी है के सर्वतर गौणे के सर्वतर पौणे के सर्वतर देश है के सर्वतर पेश है के सर्वतर राजे के सर्वतर साजे के सर्वतर दीने के सर्वतर लीने के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्रे के सर्वं कली में के परम पही में के अकलाला में के साहिब कुला में के हुसन वजू है तो मामल रजू है हमें सलसला में सली खदमदा में गन्नी मल शिकिस्ते गरीब परस्ते

में त्रिभंगे त्रिका में नृभंगी स्वरूपे सर्वंगे नूपे न पोतरे पुत्रे न सतरे न मित्रे न दाते न माते न जाते न पाते न साक्षरी कैम मितो अमी कैम।

समस्तल जबाह के साहिब कराह के नरकंपनास है बैस्तल निवास है के सर्वल गवन है मेसल रन है तमाउल तमीज है समस्तल जी सैं परम परमी सैं समस्तल।

हृपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्मा है, सर्वात्म है।

संसाद रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जो जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे

जन्म मरण दुख जाए इतना श्री महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार यंत्र ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ

सचो सच ते आया उन्हें मन दे पैर न रखे कर सुकर धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला निदे में चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़े आई।

शीतल तो शीतल है और गर्म तो गर्म है, तप दे हिरदे नूं ठार भी दिंदा है, ते जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं साड़ के सुहा भी कर दिंदा है। तो दो तरीके दे नाल नाम दे विच हर प्रकार का एलीमेंट है, पर जिहड़ा हिरदा तपदा पिया है, सड़दा पिया है, जिस द्वैष है, ईरखा है, अपनी अग दे विच आप ही सड़ना, ये एक गुजी अग हुंदी जिहड़ी दिसदी नहीं, इनविजिबल फायर जिहनूं कहिंदे ने। विजिबल सानू आ लंगर ते जाओ ते तुहानूं अग दिसेगी जिस हाथ सड़ जांदा है, जां जिहना रोटी पानी असीं पकाउंदे। वैसे चार प्रकार दीआं अग्नियां हुंदीआं ने, तो दो दा मैं जिक्र करांगा, एक जिहड़ी दिसदी है ते एक जिहड़ी दिसदी नहीं, उहनूं गुजी पाहे कहिंदे। गुजी मैंने दिसे ना, पर अग होवे, सेका उहदा होवे। तो इस अग दे नाल असीं रोटी नहीं पका सकते, यह सिकंद नहीं सड़दी, यह हिरदे नूं सड़दी है, इहदे विच हिरदा सड़दा है। गुजी पाहे जले संसारा, गुरु अर्जन देव महाराज की पंक्ति है कि गुजी अग दे नाल सारा संसार जिहड़ा ना यह सड़दा पिया। ते नाल एक गल होर कहिंदे ने कि भगत ना व्यापे माया, जिहड़ा भगत है वह इस माया की अगन तो निर्लेप रहिंदा है, भाव कि संसार दे विच रहिंदियां होईयां, इस अग दे विच रहिंदियां होईयां भी उसनू सेका कुछ नहीं कहिंदा, उसनू अग पौंदी नहीं। कई तुसीं देखिया होणा जदों जिहड़े फायर ब्रिगेड वाले बंदे जिहड़े जांदे ने जिस घर दे विच, इहनां तों कोल इक ड्रैस होंदी, जदों इह पा लैंदे ने ना ते उह भावें अग दे विचों भी निकल जाण ते उहनां नूं अग कुछ नहीं कहिंदी, अग दा सेक जिहड़ा उहनां नूं लगदा नहीं, महसूस नहीं होंदा। इस तरह भगत जिहड़े ने उह संसार दी अग दे विच रहिंदे होइआं भी उहनां नूं अग्नि जिहड़ी है उह सड़दी नहीं, लेकिन संसारियां नूं इह अग जिहड़ी है इह सड़दी। फरीद साहब ने भी कितने कहा कि किज ना बुझे किज ना सूझे दुनिया गुझी पाहे, यह संसार जिहड़ा है यह गुझी अग है, इस अग विच शरीर नहीं सड़दा, हिरदा सड़दा, मन सड़दा। कहिंदे ने फलाने नूं बड़ा साड़ आई, मेरे नाल सड़दा, उहदा भाव यह नहीं कि उहनूं अग लग गई है, उहदा मतलब यह है कि उहदा हिरदा जिहड़ा है वह खुश नहीं, ना खुश है, तृप्त नहीं। दूसरे वल वेख के उहदा अंदरों जिहड़ा कुमला जांदा, सड़ जांदा, सुआह हो जांदा, उह कहिंदे वेख के सुआह हो जांदा। यह पंजाबी कहावतां एवें नहीं बणियां होईआं। फरीद कहिंदे ने किज ना बुझे किज ना सूझे दुनिया गुझी पाहे, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बुझदा, कुछ सोचना समझना बंदे दे हाथ विच नहीं। आदमी सोचना चाहता है पर सोच जिहड़ी काम नहीं करती, इन्ना इंटैलीजेंट आदमी, नॉलेजल आदमी, जिन्ना इतना ज्ञानवान आदमी नूं भी पता नहीं लगता मैं की करना है, की समझना है। इस करके गुरु की लोड़ पैंदी है। किज ना बुझे किज ना सूझे दुनिया गुझी पाहे, दुनिया जिहड़ी गुझी अग है, अदृष्ट इनविजिबल फायर है। ते अगों फिर फरीद साहब कहिंदे ने साईं मेरे चंगा कीता, मेरे साईं ने भाव की परमात्मा ने मेरे गुरु ने यह चंगा कीता कि मैनू इस अग तो बचा लिया, भगत ना व्यापे माया, साईं मेरे चंगा कीता, नहीं तो हम भी दजा आही, नहीं तो मैं भी इस अग च सड़ के सुबह हो जाऊँ जिस अग च दुनिया सड़ती पई है। तो गुरु कहिंदे ने नाम जिहड़ा ये शीतल है, शीतल तर शीतल है और गर्म तर गर्म है। कोर दुखिंग अनकहतिंग जन्म दरिदंग महाविख्यादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, जैसे पावक कास्ट भस्म करोत, जिदा अग जड़ी है लक्कड़ नूं साड़ के सुआह कर दी है। इस तरह परमेश्वर का नाम जिहड़ा है ये पापा नूं कलेशां नूं दुखां नूं झोरियां नूं साड़ के सुआह कर दिंदा है। ये गर्म तो गर्म है, ठंडे तो ठंडा है, यह ठंडे के रूप के असी यह शब्द पढ़न लगे हाँ। तप्त कड़ाहा बुझ गया, अंदर अग बलदी पई सी ना, गुर शीतल नाम दियो, गुरु ने शीतल नाम दिता है तो मेरा तन मन जिहड़ा ठंडा हो गया।